0: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
0: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
1: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
0: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीएका लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएसका लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
1: शिक्षाशास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इङ्ग्लिस नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
0: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
1: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इङ्ग्लिस डेभलपमेन्ट स्टडिज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
0: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गतेदेखि
1: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
0: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
1: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
0: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
1: आईसीटी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
0: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाइफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
1: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
0: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
1: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
0: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस टिकापुर कैलाली
2: आओ आओ तू पायलट से आईना मत झील कर था संजू कुछ समस्या तो नहीं हुई
3: कुछ नहीं हुई सर पायलट के 15 तक वो रखना डर लग के घूम रहते हो जैसे चेयर से लग लो तो हलचल नहीं कर मोर सब हो गए किठा पहन तो पहला जाके
2: मोर सब को ना चलेना तो नहीं चलेगा ना
3: नहीं चलेना सर
2: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा पूरा से कह रहा हूँ मोर सब को देखो कर से भैया ना चलाए नहीं बिठा सब को मूला से फिर वाकर मरहल 20 असर नहीं करत कना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल देख पड़ना सप्पा है ना नंता हाँ साले पकड़ा नहीं बीत
3: सर नौ सप्पा देखना से क्या करना
2: सप्पा मुआल देख पड़ना से थे जात से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुला कुछ देर पास आसम थे सप्पा दस सकत वह वर्ष से मुआल अवस्था में थे सप्पा हाथ से चलाए नहीं बीत डेन तो निकन मा लट्ठी ले चला का मुआल नहीं मुआल कहीं का जाना से बीता
4: मुआल सरपंच से सावधान रही मुआल वा मार गई सप्पा है ना पकड़ना खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासा समी सपवा दस सिट्ठा संभव हुई सम सबको फोटो खींची वो पहचान के लायक विधि अंकन से संपर्क करी
5: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ बाक पता लगाई लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org में शेयर दिखा
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
7: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: से कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: कहाँ से लन बहु तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनते हालबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव कायम, आज कुछ प्रदेश में भारी पानी पर्ने संभावना, रलकपुर से सतर्क रहना मौसमविद के आग्रह। कैलाश्वर सामुदायिक बनुआ के साधारण सभा ऐना भदौ मशांत भीतर करना सहमति। दौलतपुर घटुआ में निर्माण हुई झुलुंगे पुल मरमत के लग एक हफ्ता में आउट जाउट सम एक हफ्ता के लग बंद हो। गुरु पूर्णिमा के अवसर में टीकापुर के तमाम ठाव में कार्यक्रम कर।

0: आप पूरा खबर हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव प्रलक ओर से मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनाइल बा हाल मनसूनी न्यून चापीय रेखा नेपाल के पूर्वी भूभाग से सरदर स्थान के आसपास में तथा नेपाल के पश्चिमी भूभाग में सरदर सेफे उत्तर पंजार लंग रहल बताया गया बा जेकर प्रभाव से हाल कोसी बागमती गंडकी लुम्बिनी कर्णाली पश्चिम प्रदेश में साधारणतया मौसम बनल बा कलसे साथै मधेश प्रदेशमा आंशिक मौसम बदलल बताइएल बा कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली सुरपश्चिम प्रदेश के धेरै स्थानमा सुरपश्चिम प्रदेशमा एक दुई स्थानमा हल्का मध्यम पानी प्रतिरलक बा आज दोपहर के देशभर साधारणतया मौसम बदलन बाकलसे देश के हिमाली भूभागमा कम स्थानमा मध्यम वर्षा के सम्भावना बा देश के पहाड़ी भूभागमा कुछ स्थानमा चट्टांग सहित मध्यम खाल के पानी पर्ने संभावना बा कोशियो सुरपश्चिम प्रदेश के तराई के कुछ स्थान में वस्तुक मधेश प्रदेश तथा बागमती लुम्बिनी और गंडकी प्रदेश के तराई क्षेत्र में तमाम स्थान में चट्टांग सहित मध्यम खाल के समेत वर्षा के संभावना बा कोशियो बागमती प्रदेश के हिमालयो पहाड़ी भूभाग में तथा कर्णाली सुरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में एक दो स्थान में भारी वर्षा की संभावना बा आज रात के देशभर साधारणतया मौसम बदलन बाकलसे देश के हिमाली और पहाड़ी भूभाग में कम स्थान में मध्यम खाल के वर्षा के संभावना बा कोशी बागमती गंडकी और सुरपश्चिम प्रदेश के तराई के कुछ स्थान में उसका मधेश प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश और तराई के कम स्थान में चट्टांग सहित के पानी पर्न संभावना रहल बा कोशी प्रदेश वस्तक पहाड़ी और तराई भूभाग में साथे बागमती और गंडकी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में एक दो स्थान में भारी पानी पर्दा संभावना रहल महाशाखा से जनाइल बा गुरु पूर्णिमा के अवसर में तमाम ठाव कार्यक्रम हुई बा अपन शिक्षा देना गुरु है सम्मानो कृत ज्ञात व्यक्त कर गिलबा गुरु पूर्णिमा के दिन में टीका फूलमाला वस्तक फल फूल छोट छोट उपहार देना चलन फेवा गुरु पूर्णिमा में समेत सम्मान ज्ञान के महत्व कीर्त ज्ञात के संभावना समेत बढ़ल रहत शंकर की गुरु पूर्णिमा के अवसर में टीकापुर में अलग योग साधना केन्द्र में विश्व शांति योग आश्रम पतंजलि योग नगर समिति लगायत के ठाव में कार्यक्रम करगिला खो नेपाल मानव धर्म सेवा समिति सेती क्षेत्र आश्रम अट्टरिया के आयोजना में समेत कार्यक्रम हुआ कार्यक्रम में सेती क्षेत्र के प्रमुख क्षमा बाईजी हितैषी बाईजी जयंती बाईजी लगायत के उपस्थिति रह कार्यक्रम में आर्थिक मामला मंत्री विक्रम सिंह धामी के उपस्थिति रह कार्यक्रम टीकापुर सहित के 10 शाखा के संयुक्त आयोजना में हुलक संचालक दीपक धिताल जानकारी दिलवाट नेपाल निर्मित शिक्षा समाज कैलाली के 26 शिक्षक दिवस मनाया गया नेपाल निर्मित शिक्षक समाज कैलाली के 300 जाने आजीवन सदस्य रलक में 175 जाने पहले के अभिलेख समेत में रलक को लौवा 125 जाने थपल बताया गया 26 निर्मित शिक्षक दिवस के अवसर में कालीखुल कार्यक्रम में 121 जाने आजीवन सदस्य वितरण करगिलवा पालिका में सबसे ढेर टीकापुर नगर पालिका में 82 जाने आजीवन सदस्य रलक बताइएगा कार्यक्रम में समेत आजीवन सदस्य जंगबहादुर बम एगे मूर्ति अरियाल देवीलाल पांडे भक्तिराम कोईराला नागरिक समाज टीकापुर के अध्यक्ष भीमराम चपाई देवकोटा साहित्य समाज के अध्यक्ष बलबहादुर रावल समाज के केन्द्रीय प्रतिनिधि काशीराम ढुंगाना टीकापुर नगर कमिटी के अध्यक्ष तथा जिला कोषाध्यक्ष ज्योति प्रसाद बुढ़ाथोकी भजनी नगर कमिटी के अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्याय उसका गौरीगंगा नगर कमिटी के सचिव वीरबहादुर मल्ल जोशीपुर के अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर बोहरा घोड़ाघोड़ी के अध्यक्ष परशुराम सापकोटा लगायत से शुभकामना मंतव्य धरल जिला अध्यक्ष सुमन कुमार नेउपाने के अध्यक्षता में कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि नेपाल निर्वेद शिक्षा समाज के केन्द्रीय उपाध्यक्ष महेन्द्र सिंह बम रहल कलसे केन्द्रीय सलाहकार मदन कुमार जोशी विशिष्ट अतिथि रहल हैं जिला उपाध्यक्ष दीपेन्द्र कुमार खड़गा से स्वागत हुईलक कार्यक्रम संचालन जिला सचिव गोपाल बहादुर एर से करल रहा खोजखरमा एकघरी विश्राम विश्राम पाछ फेर सेवी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू, व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू,
2: बीबीए र बीबीएस, ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी, फाइनान्स र मार्केटिङ,
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय, बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे, बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे।
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड, ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश, नेपाली, हेल्थ एण्ड म्याथमेटिक्स,
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे।
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए, ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश, डेभलपमेन्ट स्टडीज, सोसियोलोजी एण्ड इकोनोमिक्स,
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे, कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि।
2: क्याम्पसका विशेषताहरू, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस,
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको,
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने,
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने,
2: आईसीटी, इंग्लिस ल्याङ्ग्वेज, उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने,
1: उपचार कक्ष, ई लाइब्रेरी, फ्री वाइफाई, प्रोजेक्टर, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा, शुद्ध खानेपानी, प्राथमिक उपचार कक्ष, व्यवस्थित क्यान्टिन, खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको,
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने,
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस, टिकापुर कैलाली।
3: ल यति छिटो आमा बन्न लागेको त
4: थाहा पाउँदैछु, यस्तो अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकी सबै काम गर्नुपर्छ, यस्तो गाह्रो हुन्छ, पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ, के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन,
3: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी, 20 मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
6: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
7: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
6: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर। भागीरथी मेडिकल टिकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग, मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान, एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसीजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-770। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। कैलालियो बर्दिया चोर्ना दौलतपुर घटुवामा कर्णाली नदी उपर बनलक झुलंगे पुल चर्कल पाछे मर्मत केलक एक साता केलक बन्द करल बा। पुलमा कुछ पिलर चिरकल पाछे मर्मत केलक एक साता केलक आवत जावत बन्द करल। निर्माण कम्पनी थानी निर्माण सेवा प्राली से जानकारी देहल बा। बेहद बाहेक के 15,73,00,000 में निर्माण हिलक पुल के लंबाई 482.13 मीटर चौड़ाई 1.67 मीटर रलक बतागिल बा। नेपाल सरकार के झुलुंगे पुल विभाग अन्तर्गत के बनलक पुलमा 5 ठो मुख्य समेत अन्य सहायक करके 11 ठो समेत पिलर रहल बतागिल बा। कैलाशेश्वर सामुदायिक बनुवा उपभोक्ता समूह के साधारण सभा भदौ मशांत भित्तर कर सेटना सहमति हिलबा। सब डिविजन वन कार्यालय टिगापुर के रोहबरमा कालीखोल छलफलमा सामुदायिक बनुवा के साधन सभा ऐना भदौ मशांत भित्तर गर्न सहमति हुलक हो। छलफलमा वन कार्यालय के पदाधिकारी असन्तुष्टि पक्ष के समेत प्रतिनिधि सब डिविजन वन कार्यालय टिगापुर के प्रतिनिधि के सहभागिता जनाइल रह। छलफलमा सामुदायिक बनुवा के आर्थिक वर्ष 2082-83 के लेखा परीक्षण करके भदौ मशांत भित्तर अवसम के कार्य समिति से साधारण सभा बोलैन सहमति हुआ। सामुदायिक बनुवा के आर्थिक अनियमितता लगायत के काम करल कहती असंतुष्ट उपभोक्ता पक्ष से विरोध जनायल पाछे सामुदायिक बनुवा साधारण सभा कर सकल नहीं हो। सामुदायिक बनुवा में आर्थिक हिनामिना हुईलक कहती अख्तियार से बनुआ के कागजात समेत नियंत्रण में लेहलो अनुसंधान करते रह। लुम्बिनी प्रदेश सरकार से कार्य संपादन में थप प्रभावकारी बनाने उद्देश्य सहित पुनः मंत्रालय के संरचना समेत करलबा पुनर्संरचना करलबा। मुख्यमंत्री चेत नारायण आचार्य के अध्यक्षता में बुधवार बैठक प्रदेश मंत्रिपरिषद के बैठक से मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय बाहक के 8 मंत्रालय रहना करके प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2083 स्वीकृत करलबा। अस्ति के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री रत्नबहादुर खत्री के अनुसार यह 12 मंत्रालय संचालन हुई एलकमा प्रदेश सरकार पुनर्संरचना में समेत पुनर्गठन करो। लुम्बिनी प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय ओ 8 मंत्रालय रहना कहलवा। लौह संरचना अनुसार युवा तथा खेलकूद मंत्रालय सामाजिक विकास मंत्रालय में गाबिलवा। उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्रालय खारिज समेत करके उद्योग तथा यातायात के जिम्मेवारी आंतरिक मामला कानून मंत्रालय में समायोजन करगिलवा। सहकर के ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय हे समेत शहरी विकास मंत्रालय में गागिलवा। वन तथा वातावरण पर्यटन क्षेत्र में थप करके वन वातावरण पर्यटन मंत्रालय बनागिलवा। सहकर के मंत्रिपरिषद के बैठक से कृषि सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकृत हे समेत लोक सेवा आयोग की सिफारिश के आधार में ठाई नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्न निर्णय गर्दा निर्णय अनुसार राम प्रसाद पाण्डेय कृषि विकास मंत्रालय रूपन्देही हो भास्कर पौडेल पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशन रूपन्देही के महानिर्देशक पदमा नियुक्त तथा पदस्थापन गर्न निर्णय गरल मन्त्री खत्री से जानकारी दिले बाटै। नेपाल चिकित्सक संघ के आन्दोलन के सक्कु कार्यक्रम फिर्ता लेहल संगे आज देशभर के अस्पताल नियमित रूप में संचालन करना समेत जानकारी दिहल बा। असिके सरकार आन्दोलन र चिकित्सक हुकन संगे बुधवार सांझ के 5 बुदे सहमति हिल पाछे आन्दोलन अन्त्य हुलक हो। सहमति में नेपाल चिकित्सक संघ आपन सक्कु आन्दोलन के कार्यक्रम फिर्ता करलक घोषणा करल बा। आन्दोलन के कारण मंगलवार बुधवार देशभर के समेत सरकारी तथा निजी अस्पताल में समेत आकस्मिक सेवा बाहेक ओपीडी नियमित स्वास्थ्य सेवा शल्यक्रियामा अधिकांश सेवा प्रभावित समेत फिल बताए गेल बा। आन्दोलन के फिर्ता होलसंगे उसकु सेवा आज से पूर्ण रूप में सुचारू फिल बता गेल बा। खोजखरमा एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछ फेर सेवी सुन्तिर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
8: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
9: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बञ्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिण्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849585808।
10: महापार्वती मेडिकल जोशीपुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना।
11: महापार्वती मेडिकल जोशीपुरमा यही श्रावण 16 गते शनिबारका दिन वरिष्ठ मानसिक नशा मनोदीप तथा लागू औषध रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप देवकोटा बिरामी जाँच गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा लिनुहोस्।
10: मानसिक समस्याहरू जस्तै बेला बेलामा मुटु ढुकढुक हुने,
11: हात खुट्टा काप्ने या चिसो हुने,
10: टाउको दुख्ने,
11: धेरै पसिना आउने,
10: मनमा छटपटाहट हुने,
11: बढी रिसाउने,
10: झिझो मान्ने, झर्कने,
11: जिउ दुख्ने, दुब्लाउने, निन्द्रा नलाग्ने,
10: छारे रोग, बाख्रे रोग वा मिर्गी,
11: कामकाजमा मन नलगाई दिक्क मानेर बस्ने, कामने वा बेला बेलामा बेहोस हुने,
10: नबुझ्ने कुरा वा अमिल्दो व्यवहार गर्ने, सुर बिग्रिने, बहुलापन,
11: एउटै कार्य बारम्बार दोहोर्याउने,
10: यौन इच्छा शक्तिमा कमी या असामान्यपन,
11: धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
10: बच्चा तथा वृद्धहरूले ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने,
11: आत्महत्या गर्ने इच्छा उत्पन्न हुने तथा आत्महत्याको प्रयास गर्ने,
10: निराशापन, उटी बेलै मरिहाल्छु कि जस्तो लाग्ने, जति उपचार गरे पनि ठिक नहुने
11: र रक्सी तथा लागू पदार्थ छोड्न चाहने।
12: डाक्टर आउने दिन यही श्रावण 16 गते शनिबार, समय दिउँसो 1 बजेदेखि।
10: साथै एक्सरे र भिडियो एक्सरे, मुटुको एक्सरे, ईसीजी, ल्याब तथा 24 घण्टा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध छ।
11: सम्पर्क स्थान महापार्वती मेडिकल जोशीपुर कैलाली, मोबाइल नम्बर 9826614306 र 9846739785।
13: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
14: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
13: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
14: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
0: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नम्बर 9600071024 ओ 9046477417। विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। गोपाल अस्तोत्तर 108 कुन्दियत विराट कोटी होम महायज्ञ सफल बनेना तमाम सामाजिक अगुवाहुंकलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिगेल बा। अन्तत विभूषित श्री 1008 महामण्डलेश्वर स्वामी ईश्वर चैतन्य महाराज के संयोजक महुलक समितिमा महासचिव के जिम्मेवारी भैरव रावल दैगेल बा। उसँग सचिवमा दयाराम सञ्जाल, कोषाध्यक्षमा रामबहादुर भण्डारी, रहल बाटे कलसे, सह कोषाध्यक्षमा नरबहादुर कडाइत ओ मक्कर केसी हे जिम्मेवारी प्रदान गरिगिल बा प्रचार प्रसार समितिकै संयोजकमा भुवनेश्वर अधिकारी बाटिङ कलश काठमाडौँ सम्पर्क करकलाग काठमाडौँमा सम्पर्क क्लाक चेतमान खत्री जिम्मेवारी दैगिल्बा लेखन तथा सम्पादन के जिम्मेवारी डाक्टर योगेन्द्र प्रसाद बजगाई हे दैगिल्बा कलश भण्डारा उपसमिति के संयोजकमा राजु बम रहलबाटै महाज्ञ केलाक थप समिति बन्ती जैना हो जिम्मेवारी फिर देती जैना तयारी करल आश्रम के महासचिव पुष्पा बम बथैलेबाटै ईश्वर प्रेमी सेवा आश्रम टिगापुर के आयोजनामा गोपाल अस्तुत राष्ट्र 108 कुण्डिये विराट महाज्ञ कोटी होम के आयोजना होइन बा आगामी मंगसिर 12 गते से शुरू होइन महाज्ञ मंगसिर 22 गते सम्म चल्न कहलबा ओ हाथ हाथ में मोबाइल इंटरनेट के पहुंच के परंपरागत हुलाक के अस्तित्व में प्रश्न उत्तर हाल समय में हुलाक स्मार्ट बनेना सरकार की योजना प्रभावकारी बनती गई बा प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह नेतृत्व के सरकार से हुलाक सेवा है प्रभावकारी बनायेलक स्मार्ट हुलाक के अवधारणा आगे बढ़ाए की बात है लौ सरकार गठन पाछे सार्वजनिक करगिल शासकीय सुधार संबंधी 100 दिने कार्यसूची में बुदा नम्बर 27 में राहदानी नागरिकता के प्रतिलिपि सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत के सरकारी कागजात घर में पुगेना व्यवस्था मिलाय उल्लेख करगिल बास्तव करके सरकार के चालू आर्थिक वर्ष के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजट वक्तव्य बहुचिम देशभर के हुलाक काम है कार्यक्रम है कर्मश स्मार्ट हुलाक के रूप में करना उल्लेख करगिल बा परम्परागत पत्रा वितरण समिति के हुलाक सेवा है डिजिटल प्रविधि मैत्री ओ समेत बहुदेशीय रूप में सार्वजनिक सेवा केन्द्र के रूप में विकास करना उद्देश्य स्मार्ट हुलाक कार्यक्रम संचालन करगिल हुलाक विभाग के महानिर्देशक मनमाया भतराई पंगेनी हे समेत बतागिल बा यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जेना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से देशभर मानसूनी वायु के प्रभाव कायम कुछ स्थान में कुछ प्रदेश में भारी पानी पर्न संभावना रलकपुर से सतर्क रहना मौसमविद के आग्रह कैलाशेश्वर सामुदायिक बनुआ उपभोक्ता समूह के साधारण सभा ऐना भदौ मशांत वितरण करने सहमति दौलतपुर घटुआ में निर्माण हुई झुलुंगे पुल मरम्मत के लग एक हफ्ता लग आवत जावत बंद वो गुरु पूर्णिमा के अवसर में टीकापुर में तमाम कार्यक्रम रिटावकलक खारूक भाषक खोज खबर अटै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी अबे के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते रहे राम राम
15: आमा राति छ कता जान लाग्नु भयो नि
16: पिसाब लाग्यो चर्बी जान लाग्यो नि
15: ए पख्नु त्यसो भए म टर्च लाइट र लट्ठी दिन्छु लिएर जानुहोस्
16: किन नि सानो लट्ठी र टर्च लाइट
15: किन हुनु नि आमा रातको समयमा बाहिर निस्किनु पर्दा वा टोइलेट जानु पर्दा जहिले पनि टर्च लाइट बालेर र लामो लट्ठी लिएर मात्र जानुपर्छ किनकि बर्खायामको समय छ सर्पहरू हुन सक्छन् टर्चको उज्यालोले सर्प देख्न सकिन्छ र लट्ठीको टकटक आवाज सुनेर सर्पहरू भाग्न सक्छन्
16: कति राम्रो सल्लाह दिएको सानो तिमीले
15: आमा हामीलाई नि स्कूलमा म्याडम सरहरूले सर्प लुक्न सक्ने स्थानहरूबाट हिँड्नु परेमा वा काम गर्नु परेमा जहिले पनि थप होसियार हुनुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको छ नि अझै धानबारी झाडी अथवा अग्ला घाँसहरू भएको ठाउँहरूबाट हिँड्नु परेमा लामो लट्ठी लिएर टकटक आवाज गर्दै हिँड्नुपर्छ भन्नुभएको छ
17: सर्पहरू वर्षायामको समयमा सुक्खा ठाउँमा बस्न मन पराउँछन् आफ्नो वासस्थानमा पानी पस्ने हुँदा सुक्खा ठाउँको खोजीमा उनीहरू बाहिर निस्कन सक्छन्
18: मुसा कुखुरा जस्ता आहारको खोजी गर्ने क्रममा पनि सर्पहरू मानव बस्ती नजिक आउन सक्छन् भरपर्दो र सही जानकारी प्राप्त गर्न र नजिकको उपचार केन्द्र कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org अर्थात् SNAKEBITENEPAL डट ओआरजीमा गई आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ।
19: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
20: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना।
21: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमका लागि तपसिल अनुसारको जनशक्ति आवश्यक परेकाले इच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ।
20: जनशक्तिका विवरणहरू:
21: सहायक प्राविधिक संख्या एकजना पूर्णकालीन, योग्यता कम्तीमा 12 कक्षा उत्तीर्ण, रेडियो प्रविधिको बारेमा अनुभव र ज्ञान भएको।
20: पत्रकार संख्या एकजना थारूभाषी पूर्णकालीन, योग्यता कम्तीमा स्नातक रेडियो समाचार लेखन कार्यक्रम उत्पादन भएको र भिडियोग्राफी जानेको।
21: सहायक प्राविधिक संख्या एकजना आंशिक, योग्यता कम्तीमा 12 कक्षा उत्तीर्ण, अडियो भिडियो सम्पादन सिप भएको।
20: बजार प्रतिनिधि संख्या एकजना आंशिक, योग्यता लेखा बजार शास्त्र विषयली कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेको स्नातकलाई ग्राह्यता।
21: समाचारदाता संख्या एकजना स्ट्रिङ्गर, अल्पसंख्यक थारू दलितलाई प्राथमिकता, योग्यता एसएलसी वा कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेको, पत्रकारिताको अध्ययन वा अनुभवी।
20: पारिश्रमिक संस्थाको नियमानुसार हुनेछ। इच्छुक उम्मेद्वारले साउन 15 गतेसम्म आफ्नो व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र तालिम अनुभवका प्रमाणपत्र सहित सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएममा निवेदन पेश गर्नुहोला। थप जानकारी चाहेमा फोन नम्बर 9811363633 सम्पर्क गर्नुहोला।
22: चर्पी भर्न चेपे का चिन्ता, आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाईमा फोन गरी आ बाक सरसफाई कै दिही।
23: फोन नम्बर कटा हो त
22: ली डायल करी 97 620 20 300।
23: हेलो, आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई हो?
24: हजुर हो।
23: महिन राजापुर बजारमा ट्याङ्की सफाई गर्न बा?
22: अपनौ कण्ठे, टिकापुर, जानकी, जोशीपुर, भजनी, सत्ती, राजापुर, गेरुवा ओ लम्की मन सेफ्टी ट्याङ्की, गोबर ग्यास ओ रिङ वाला टोयलेट सरसफाई कर परिकन से आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवा हान सम्झबे। संचालक शेरबहादुर थारू, सम्पर्क नम्बर 97 620 20 300 ओ 98 656 92 026।
25: रिमाल मेडिकल हल टिकापुरमा मानसिक नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना।
26: काठमाडौँ पाटन अस्पतालका मानसिक नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन नरियाल एमबीबीएस न्याम्स
25: साउन 16 गते तेस्रो शनिबारका दिन
26: रिमाल मेडिकल हल टिकापुरमा आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
25: मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा दिइने सेवाहरू जस्तै बेला बेला मुटुको गति बढ्ने, हात खुट्टा काम्ने, झमझमाउने, धेरै पसिना आउने, एक्कासी बेहोस हुने, डर लाग्ने, मनमा छटपटाहट हुने, धेरै झस्किने, तर्सिने वा डराउने, असामान्य रूपमा धेरै टाउको दुख्ने, धेरै रिसाउने, जीव दुख्ने, मांसपेशी वा हात जोर्नीको दुखाई, दुब्लाउँदै जाने, कामकाजमा मन नलाग्ने, दिक्क लाग्ने, बेला बेला बेहोस हुने, नराम्रो सपना देख्ने, घाँटीमा केही अट्के जस्तो लाग्ने, छातीमा असजिलो महसुस सुने वा मन स्थिर नहुने, कुनै पनि कुरामा मन नलाग्ने, आत्मगलानी हुने, एक्लै हाँस्ने, मुस्कुराउने, बरबराउने, छारे रोग, मिर्गी रोग, रातिको समयमा धेरै मदिरा सेवन गर्ने, लागू पदार्थको सेवन धेरै गर्ने, बच्चा तथा वृद्धहरूको व्यावहारिक समस्या, ओछ्यानमै पिसाब फेर्ने जस्ता समस्या भएका बिरामीहरू सम्पर्क गर्नुहोला।
26: सम्पर्क रिमाल मेडिकल हल टिकापुर एक कैलाली,
25: डाक्टर आउने दिन साउन 16 गते तेस्रो शनिबार।
26: सम्पर्क नम्बर 91 5 60 267, मोबाइल नम्बर 98 25 69 70 13 75 र 98 046 71 598।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: यादे मुस्कट औरत आज हेरोटे बुढ़वा
1: उहटे हेर बुढ़िया बरखाक समय छे बा पखारिक मुहका रुकल बाकी मुसवा आयल कलस याब मुसक खुशी सपवा से आइसे था
0: ओहो होनिका ठक समझनो बरख अंदर पाद सफास से बाहर से कत्था का पहिल बा काट पर ना रह
1: हां असि करी हेर बुढ़िया ओ सिन्हो कलस से काल मिट्टी ना ओ टेला रोटी पखाका बासी छै दूसरा सर परियार मने मिलकर सर सफाई करबी दूसरा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन करबी तनी भी
0: हुई था हो बुढ़वा असि डाला मत ध्यान घास पोहर सफास भी था म साफ नुख बैठल रह सकता ना
1: ओहो से त कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू ओ मई मिलकर घरक आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाए पड़ल बखारिक मुहकर से साफ मुस्कुस के पैठनी सेकना में चबरदार दूसरा घरक आंजर पांजर फसफार वो सफा हुई से साफ पहना का उस तरह कम हो जाए
0: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुसत थे बा
2: साफ बरखा छाकक समय मा सुखा ठामा बैठा मन पड़े था इ मौसम मा आपन बस्यारा मा पानी

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, कहा का कना हो बाबा फिर वस्त बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: सूचना सूचना सूचना
1: कंसल्टेंट इंडोक्राइनोलॉजिस्ट एमबीबीएस एमडी इंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबोलिज्म डाक्टर कृष्ण ऐरी ईशान मेडिकल हल टीकापुर में यही साउन 23 गते चौथो शनिवार का दिन बिरामी चेक जांच गर्न आउँदै हुनुहुन्छ।
0: निम्न समस्याहरू:
1: सुगर रोग,
0: गर्भकालीन मधुमेह,
1: महिला को शरीर में अनावश्यक रौ बढ़ने,
0: सुगर रोग का कारण हुने समस्या जस्तै खुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, दिन तथा रात में पटक पटक पिसाब लाग्ने, मुख सुक्ने, तिर्खा लाग्ने,
1: थायराइड कम जस्तै थकान लाग्ने, तौल बढ़ने, छाला सुक्खा हुने, कपाल झर्ने, अनुहार फुल्ने, चिसो बढी लाग्ने,
0: थायराइड बढी जस्तै तौल घट्ने, धड्कन बढ्ने, पसिना धेरै आउने, निन्द्रा नलाग्ने, हात कामने, चिचिडापन, आँखा फुलेर बाहिर आउने,
1: कम उमेरमा पनि प्रेसर, मोटोपन, कोलेस्ट्रोल बढ्ने,
0: उमेर अनुसार शरीरको उचाइ नबढ्ने वा धेरै अग्लो हुने, महिनावारीमा गडबडी र यौन इच्छामा कमी हुने। के तपाईँले निम्न मध्येका कुनै समस्या त छैन? छ भने ईशान मेडिकल हलमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9852131 र 9860114000। डाक्टर आउने समय प्रत्येक महिनाको चौथो शनिवार बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म। सम्पर्क स्थान ईशान मेडिकल हल टिकापुर 1 कैलाली।
2: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वा नन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उनेना पट्टा नि पैना त
3: अजी गहना बनाइना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कतरा सुघर बना कन ल बाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141261 ओ 9846 39261।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ट रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: यो खाने मन त कहाँ छ र तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ
5: तर एक्लो कहाँ छस् र यार त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नुपर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ
4: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
5: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्केँ काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरजम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होला उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म
4: ओहो तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस् त यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु
6: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश

0: 48 42 73 59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपा देवी मंदिर नजिकै
1: चर्पी भरगिल का करना हो का
2: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
1: फोन नंबर कटरा हो त
2: ली डायल करी 97 26 20 3 00
1: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
2: अपना कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हान समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 26 20 3 00 98 656 92 026

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से लड़का सामान निहर।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई, कबू लड़का कपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लन बो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज कहा हो बाबा के वस्त बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

जयगुरु बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, मन की आवाज, समरस समाज के लक्षण आबीसी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम मझेरी का सलाक के बैठक सकु रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रह स्वागत के संगे अभिवादन करे चाहते मैं मिशन अमी के बैठक में बैठ के साथ देते बाबू रत्न मगर और मई बाटो अपने संगे मैं मिशन अमी के अपने संगे संगे हमें यात्रा करे पनारी करीब करीबी 1:45 बजे से हम सगाई रूप कश्चिन बा हाल खबर बिगलो कुशल मंगल आराम हुई भी अपने होंगे फेन मई फिर एकदम आराम बाटो अपने को एकदम आराम हुई भी कना भरपूर आसने बाटो जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में रंधा में बिजी में विपटर में यात्रा में जहां हुई भी जोन ठाव में हुई भी वह ठाव में कार्यक्रम में वह ठाव से कार्यक्रम में सहभागी जनाई सकती वकला खान में लाइन खुला कैदे बाटी 91.5/61.2% के लाइन एकदम खुला व फटाफट डायल कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनाई सकती का नाम है अपने अर्जी अनुरोध और निवेदन कर दो तो कार्यक्रम में चाहिए विशेष करके आज के दिन चाहिए अपने के कोई भी टैलेंट कोई भी प्रतिभा सुनाई रखम चाहिए गीत गजल भावना मुक्त चुटकुला शायरी शेर चिरे चुरगुन की आवाज जानवर की आवाज नेतन के नकल के कैरिकेचर कोई भी टैलेंट कोई भी प्रतिभा अभिनंदन बाघ कार्यक्रम में चाहिए सुनाई कार्यक्रम में दायर करते कर भी और कार्यक्रम में चाहिए मजा मजा थार भाषा के गीत हमें सुने नहीं बाटी का नाम है जानकारी कर करीब करीब 1:45 बजे से हम यात्रा करके साथ देवी दोपहरी समय हो दोपहरी समय अलसी समय अलसी समय कुछ रमाइल कार्यक्रम और इस समय है कुछ हसम रह रंगीत कार्यक्रम मैं अपने हुकन के संगे बात मैं मिशन और मैं के साथ देते हैं बाबू रत्न अपन मगर संगे संगे अपने हुके हमारे संगे यात्रा करे पड़ी जहां हुई भी व्यापार व्यवसाय के बावजूद व्यापार के बिजी में हुई भी व्यापार बिजनेस करती हुई भी या लुगा सीती हुई भी या गृहिणी दीदी बहने हुके खाजा नाश्ता बनाती हुई भी या खाना तैयारी हुई कोई खाई थी कोई यात्रा में हुई भी मतलब जी जहां हुई भी काम में हुई भी वस्ते के रेडियो खोल के रेडियो सुनत हुई भी आराम करत हुई भी जहां हुई भी जोन ठाव में हुई भी कार्यक्रम में सुनकर साथ देवी करना जानकारी करती कार्यक्रम में डायल करते कर भी 91.5/61.2% के लाइन खुल लेगा कार्यक्रम के शुरुआत में श्रीगणेश कर एक रमाइलो गीत से गीत के बाद से मैंने बाटो डायल करते कर भी 91.5/61.2% लाइन खोल लेगा

हजुर एकदमै रमाइलो गीत अब तो आजा सजन काहे हम के शतावे बिल्कुले रमाइलो गीत रहे आफ्नो कान मन परल हुई सायद मैले एकदमै मन परल आफ्नो कान एकदमै मन परल हुई लागल बहिन और जहाँ हुई सब एन्जोय पक्कै फेक करल हुई दिए ओके जे जहाँ हुई भी कार्यक्रममा सहभागी जनाई सुने 9551625555 अथवा 0915612555 लाइन खुल्लै बा सस्तो रोमान्टिक गीत लभ सिक्वेन्स के गीत लभ सङ आफ्नो कान सँगसँगै हाम्रो जरुर फ्यान सुने नै नै बाटी और अपने हुकन के संगे संगे मजा मजा अपने के टैलेंट फिर सुने नै बाटी तो अपने के अपन टैलेंट सुने एकला अपन प्रतिभा सुने एकला हमन कॉल करी सुने 9551625555 अथवा 0915612555 लाइन एकदमै खुला बा फटाफट डायल कर दिए कार्यक्रम में सहभागी जनेगी काहे कि अपने के प्रतिभा सुनना हो हरेक अथवार के बिहीबार के दिन हमारे अपने हुकन के संगे थी हरेक अथवार के सोमवार मंगलवार बुधवार और बिहीबार चार दिन हमारे फरक फरक विषय वस्तु लेके आई थी सोमवार के दिन हमारे कार्यक्रम निशाना मार्फत आई थी मंगलवार के दिन विशेष करके अपने हुकन संगे अंताक्षरी के लिए वस्तु के बुधवार अपने के रोजल खोजल सुसल गीत सुनाये कल से बिहीबार हमारे अपने हुकन के संगे विशेष करके कोई भी टैलेंट कोई भी प्रतिभा सुनाई लगे थी तो उसके अपने के संगे मैं आपको कल बात तो आपने अपन चैलेंज सुने वाला कार्यक्रम है इतने भी कार्यक्रम में जानकारी करती बातों सुने का नबे 5612555 के लाइन खुलेगा अधिक छाप गीत जोड़ गीत के पास मैंने बात डाल करते कर भी सुने का नबे 5612555 लाइन खुलेगा तस्तम करेंगे इंजॉय करी ई रमाइलो गीत

0: हजुर बिल्कुल रमाइलो गीतको पाछपञ्च स्वागत गर्दैसँगै त्यही पनि एकैछिन व्यापारिक विषय हामीले नै बेला हुँदै बाटा मारे केही सर्ट कमर्सियल ब्रेक ब्रेकको पाछमै नै बाटो कार्यक्रममा सहभागी जाने चाहिँ गरी तस्मको एकैछिन व्यापारिक विषय विश्रामको पाछमै अनि बाटो डायल गर्दै गरेपछि 091-5162-255 तस्मको लागि एकैछिन यी व्यापारिक विश्राम
1: आओ
2: आओ तू पायलट से आई ना मत झील कर लो था संजू कुछ समस्या तो नहीं हुई
1: कुछ नहीं हुई सर पायलट के 15 सफर रख लू सर लग के घूमत रहते हूँ कैसे चेयर सर लग लो तो हल्का नहीं कर मोर सपो का इकट्ठा पहन लो तो पायलट जाके
2: मोर सपो है ना चलेना तो नहीं चलेगा ना
1: नहीं चलेगा सर
2: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा पूरा से कहो मोर सपो देखो कल से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपो मूला से भी वाकर मरहल 20 असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल देख पड़ना सप्पा है ना नंग तो हाँ साले पकड़ा नहीं भी
1: सर मुआल सप्पा देखना से क्या करना
2: सप्पा मुआल देख पड़ना से थे जात से मुआल नहीं रह सकत पत्ता मुला कुछ देर पास आसम थे सप्पा दस सकत वह वर्षे मुआल बस थमा थे सप्पा हाथ से चलाए नहीं भी बेंतन इतना मल अच्छी ले चला था मुआल नहीं मुआल कहीं खजाना से भी था
3: मुआल सापन से सावधान रही मुआलवा मार गई सप्पा है ना पकड़ना वा खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासा संफी सप्वा दस सिठा संभव हुई सम सप्पो फोटो खींची व पहचान कला विज्ञापन से संपर्क करी
4: पर पदंग से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकी था पता लगाए लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेर सकता
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिजा सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटरा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन युभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी।
4: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
5: मैं नहीं जाइस, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9046477417।
8: घर परिवार में सभी बिरानी आखिर स्वस्थ रह स्वस्थ व्यवहार अपनाउनु पर्यो, तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र? कहिले कोही बिरामी, कहिले कोही बिरामी, म त दिक्क भइसक्यो, कसो कालले छिटो नलाग्यो।
9: होइन चाइनिजो माइलो,
10: त्यो बर्बर बर्बर कराइरहेछ, के भएको छ तँलाई?
8: हेर्नु न, साह्रै समस्या पर्यो क्या, कहिले के रोग आउने, कहिले के समस्या आउने, म त हैरान भइसके। छोरो उस्तै बिरामी छ, स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ, बा त्यत्रै बिरामी, सबै हैरान भने म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ, भोक लागे लागे हुन्छ, खानै सक्दैन।
9: तेरी माइला, यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ? त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो।
11: हजुर, स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन्, साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्।
12: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर, ठकरला रोड, टिकापुर, कैलाली।

0: I come in, sir?
1: आओ तू पायलट से आई ना हमारा झील का नोटा समझू कुछ समस्या तो नहीं हुई
0: कुछ नहीं हुई सर पायलट के पंद्रह सफवा रख लू सर लग के घुमा प्रयासर हूँ जैसे चेयर सर लग मैं हल्का नहीं कर मोल सपो का इकट्ठा पाई ना तो पायलट जाके
1: मोल सपो है ना चलेना तो नहीं चलेगा ना
0: नहीं चलेना सर
1: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा पूरा से कहो मोल सपो देखो कर से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपो मूल से फिर वाकर में रहा बीस असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल डिप करना सप्पा है ना नंता हाँ साले पकड़ा नहीं भी
0: सर मुआल सप्पा डकना से आ करना
1: सप्पा मुआल डिप करना से थे जाग से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुआल कुछ देर पास आ संके सप्पा दस सकत वह वर्षे मुआल अवस्था में थे सप्पा हाथ से चलाई नहीं भी बेंतन इतना माल अच्छी ले चला था मुआल नहीं मुआल कहीं खजाना से भी था
2: मुआल सापन से सावधान रही मुआल वह मार्गी सप्पा है ना पकड़ना वा खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बास संकी सपवा दस से था संभव हुई सम सपो फोटो खींची व पहचान कला विज्ञापन से संपर्क करी
3: सर्पदंश से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकी था पता लगाई लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेर सकती था
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं
6: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
7: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
6: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
7: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
8: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmcticapur@gmail.com

फिमके सन्झे 5 बजे थारू भाषाकी खोज खबरमा अपनी कन स्वागत बा। खोज खबर सेमै सीता चौधरी के राम राम। अपने उखरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल साम्र पात्र नेपाली पात्र मफे सुन्टी रहलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर की टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा टीकापुर महोत्सव के आय व्यय सार्वजनिक आमदानी के 25% रकम बचत। धनसिंहपुर प्रवासी युवा समिति द्वारा राष्ट्रीय सीएर आधारभूत विद्यालय मरू भाडा सूर्य पूर्ण शुद्ध खाने पानी के फिटर वितरण फिल्टर पलक विद्यालय परिवार खुशी। संघीय शासन प्रभावकारी बनने आवश्यक राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष दाहाल। घटना की समीक्षा प्रति शिक्षा परिषद की बैठक सम्पन्न।

0: पूरा खबर टीकापुर महोत्सव के आए व्यय सार्वजनिक कर विभाग आयोजक टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ आज पत्रकार सम्मेलन करके महोत्सव के आय व्यय सार्वजनिक कलबाट आय व्यय सार्वजनिक अति टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष संतोष खड़का की टीकापुर महोत्सव में 1,25,16,000 के कारोबार हुए जानकारी दिलवाट अध्यक्ष खड़का टीकापुर महोत्सव में से उद्योग वाणिज्य संघ 26,16,000 रूपया नाफा हुए को 2,26,000 रूपया उठना बाकी रहा को 3,87,000 रूपया लेहपन्ना हिसाब में रख पत्रकार सम्मेलन में जानकारी करवाट टीकापुर महोत्सव में सबसे दूर बढ़ी 74,50,000 रूपया टिकट बिक्री मसे आमदानी हुई से स्टील मसे 17,39,000 आयोजक मसे 6,14,000 परिसर मसे 5,00,000 बाल उद्यान मसे 4,50,000 रूपया आमदानी हुई महोत्सव में सबसे धीर बढ़ी खर्च कलाकार के पारिश्रमिक में 32,95,000 मसलन द छपाई खर्च 13,79,000 भोजन अतिथि सत्कार में 13,48,000 रूपया खर्च लग अध्यक्ष खटका जानकारी दिलवाट रूपया उठना समय लगलग को कलग सक्कू रूपया उठेलक हिसाब किताब सार्वजनिक करना का ये फिर कुछ ढिलाई हुलक फिर अध्यक्ष खटका के बोटेलवाट यह वर्ष उठपन्ना रकम असार मसान्त सम 2,26,000 रूपया के लिकलग को अभिनसम साउन महीना में फिर कुछ रकम उठसिकलक समेत पत्रकार सम्मेलन में जानकारी करेलवाट टीकापुर महोत्सव 2082 साल पुष 29 गते से माघ 11 गते समय टीकापुर में संचालन हुई रहा टीकापुर में महोत्सव के सार्वजनिक कलक हिसाब में हेलक महोत्सव के आमदानी के 74.20% रकम खर्च हुई देखलस फे उठना बाकी लेपना हिसाब सहित 25.80% रकम के लिए बचेना आयोजक सफल हुई देख गिलवा धनसिंहपुर प्रवासी युवा समिति द्वारा राष्ट्रीय सीए आधारभूत विद्यालय अग्ना फाटा सूर्यपुर में शुद्ध खाने पानी के फिल्टर वितरण कलाबाट विद्यालय में अध्ययनरत छोट छोट बाल बालिका उनके शुद्ध खाने पानी पीना फे प्रवासी युवा समिति के पानी के टैंकी सहित शुद्ध ताटुलो जूर पानी पिनाइना मेसिन वितरण कलक समिति के संयोजक दीपक विकास जानकारी दिलक बाट हेचो ताटुलो जूर पानी पिना मेसिन पैलक विद्यार्थी लगायत विद्यालय परिवार खुशी विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष सुमन चौधरी के अध्यक्षता महिलक कार्यक्रम में टीकापुर नगरपालिका वडा नंबर 8 के वडा अध्यक्ष दीर्घ ठकुल्ला विद्यालय के सहयोग करके वाफत सहयोगी समूह धनसिंहपुर प्रवासी युवा समिति यहां धनबाद डेलाट वहां देशभर हुए से फिर अपन गांव घर यहां समझ के तेजोसिंह क्षेत्र में सहयोग कलक देखल खुशी लगलग बोटिलोट धनसिंहपुर प्रवासी युवा समिति धनसिंहपुर में से देश बाहर अलग धनसिंहपुर रुकन के एक समूह हो वहां का धनसिंहपुर के स्वास्थ्य अन्य विविध क्षेत्र में सहयोग करती यती रहलबाट हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव प्रलम मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनेलवा हाल मनसून के नुचापी रेखा नेपाल के पूर्वी भूभाग में सर्द संघ के आसपास में तथा नेपाल के पश्चिम भूभाग में सर्दर उत्तरतर्फ रहलवा वकर कारण हाल कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश में साधनतया बदली लगनामा संग मध्य प्रदेश मानसिक बदली लगनामा कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली प्रदेश के कुछठाउ संग सुदूरपश्चिम प्रदेश के एक दुईठा में हल्का से मध्यम वर्षा हुई रहवा आज के देशभर साधारणतया बदली लगनामा देश के हिमाली भाग के कम ठाव मध्यम समय के वर्षा की संभावना बा देश के पहाड़ी भाग के एक दुईठा में सट्यान सहित मध्यम समय के वर्षा की संभावना बा कोशी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई के कुछ ठाव मध्य प्रदेश तथा बागमती लुम्बिनी और गण्डकी प्रदेश के तराई के कम ठाव में चट्यांग सहित मध्यम समय वर्षा की संभावना बा कोशी और बागमती प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भाग के तथा कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भाग के एक दुई ठाव में भारी वर्षा की संभावना बा आज रात के देशभर साधारणतया बदली लग्नमा देश की हिमालय पहाड़ी भूभाग के कम ठाव में मध्यम समय के वर्षा के संभावना बा कोशी बागमती गण्डकी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई के एक दुई ठाव मध्य तथा प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश के तराई के कम ठाव में चट्यांग सहित मध्यम समय वर्षा के संभावना बा कोशी प्रदेश के पहाड़ी और तराई भूभागसंग बागमती और गण्डकी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के एक दुई ठाव में भारी वर्षा के संभावना लग महाशाखा जारी लबा खुश खबर में एक विश्राम विश्राम पास फिर से विश्वतरी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा संबंधित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इङ्ग्लिस नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इङ्ग्लिस डेभलपमेन्ट स्टडिज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 0915600088 र 561-088
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस टिकापुर कैलाली
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं
3: बिस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली
5: दाजु हेर्नुहोस् न भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु
6: के गरौ त म यत्रो उपचार गरिसके कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न
5: दाई बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि
6: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक
7: सत्कार मेडिकल सेवाका फास्ट सेवाहरू ओपिडी सेवा भिडियो एक्स रे सेवा ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा इसिजी सेवा मेडिकल सेवा इएनटी सेवा प्लास्टर सेवा बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म डाक्टर हेमन्त स्वार टिकापुर ब्लक नम्बर 7 गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टिकापुर फोन नम्बर 0915600095 मोबाइल नम्बर 98484273059
0: अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल संघीय शासन प्रणालीकी प्रभाव कार्यालय केलाक संस्थागत व्यवस्थापन सुधीर बन्ना आवश्यक भोटिलोबाट विधायन व्यवस्थापन समितिका सेफ दरबार मगलक संघीयतामा विधायकीय अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम अध्यक्ष दाहाल अब संविधान संशोधन के चर्चा हुटिल मुख्य ध्यान संघीयता कार्यान्वयन आवश्यक नीतिगत सुधार तथा संघ प्रदेश स्थानीय तहबीचकी अन्तर सम्बन्ध सुदृढीकरणमा केन्द्रित विपन्ना बोटेलोबाट अध्यक्ष दाहाल संविधानकै अनुसार निर्माण विपन्ना कानून व्यवस्थित रूपमा आखा बहिना विधेयक समितिकै आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकै उप विज्ञको संघ छलफल गरे हालि निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक तारहल बोटिलोबाट कार्यक्रम सांसद थुक्र संविधानकी मर्म अनुसार विधायककी समन्वय केलाक स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरे कार्यान्वयन करपना संहिता सबलीकरण गर्न प्राथमिकताकी आधारमा आवश्यक कानून निर्माण करपना जोड़ दिलोबाट कार्यक्रम फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टरका अध्यक्ष डाक्टर खिमलाल देवकोटा संघ प्रदेश स्थानीय तहकी आवश्यक समन्वय बिना आफ्नो ढंग कानून निर्माण कलक विधायकी समन्वय संस्थागत क्षमता कमजोर मन्टी गलत धारणा धरलबाट अध्यक्ष डाक्टर देवकोटाकी कर्मचारी समायोजन अपूर्ण रहलक प्रदेश स्थानीय तहमा जनशक्तिकी अभाव देखलक समेत बुटिलोबाट प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदकी अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहकी अध्यक्षतामा आज राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदकी 43औं बैठक सम्पन्न हुनमा बैठकले देशकी समग्र सुरक्षा अवस्थाकी समीक्षा गर्दै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम धर्नासकको सुरक्षा निकाय तथा सरकारवाला बीच समन्वय थप प्रभावकारी बनाउन निर्णयकलबाट बैठकमा देशकी समग्र सुरक्षा अवस्था तथा यस 29 गते सुनसरीमा हुलक घटनाकी समीक्षा गर्दै राजनीतिक दल स्थानीय सरकारवाला वा सुरक्षा निकायकी सुप्त प्रयासमा अवस्था समन्वयकरणतर्फ उन्मुख हुल परिषदकै तर्फमा चाहिँ ब्रिफिङ गर्न रहे बैठक पाछ परिषद जारी कला विज्ञप्तिमा भविष्यमा असिन घटना दोहोरना नदिन सक्कु सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सरकारवाला संघ समन्वयकर्ती सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकताकी भावना कायम धर्ना गर्के प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न उल्लेख गर्नबाट संघ विपद घटनामा खोज उद्धार तथा राहतकी कार्यालय समयमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय सुदृढ बन्न निर्णय हुलक विज्ञप्तिमा जानबाट बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री वीरेन्द्र शाह गृहमन्त्री सुदन गुरूङ परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल अर्थमन्त्री डाक्टर सोनी मगले नेपाल सरकारकी मुख्य सचिव गोविन्द कार्की प्रधान सेनापति अशोक सिग्देल उपस्थिति रहे। खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछ फेरि विश्वतिर वि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
5: दाजु हेर्नुहोस् न भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु
6: के गरौँ त म यत्रो उपचार गरिसके कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न
5: दाइ बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि
6: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक
7: सत्कार मेडिकल सेवाका फास्ट सेवाहरू ओपिडी सेवा भिडियो एक्सरे सेवा ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा इसिजी सेवा मेडिकल सेवा इएनटी सेवा प्लास्टर सेवा बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म डाक्टर हेमन्त स्वार टिकापुर ब्लक नम्बर 7 गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टिकापुर फोन नम्बर 0191-560-095 मोबाइल नम्बर 98484-27359
8: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जै भो पाछ से सुरु करल मने घर सिजार सेक्ल
9: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गई बाटू मिलबो मिलबो नि करत का कहना हो का
8: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ र घूम जाए तो था पाए
10: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
11: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26
12: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार
13: टिचिङ हस्पिटलबाट एमबी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फेमिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ
12: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
13: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
12: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
13: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
12: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
13: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
12: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
13: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
12: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
13: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म
12: सम्पर्क फोन नम्बर 98-68-80-0008 र 98-25-63-77-72
0: सुनसरी के देवांश गज महिला दुखद घटना की समीक्षा करते राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के 43औं बैठक सम्पन्न हुआ प्रधानमंत्री वीरेन्द्र शाह द्वारा आह्वान कल उक्त बैठक में सुनसरी के देवांश गज गांवपालिका तीन कप्तानगंज में द्विपक्षीय बीच के हुलक झड़प के क्रममा एकजना के मृत्यु हुलो वा कर्पास उत्पन्न परिस्थिति बारे विस्तृत समीक्षा हुलक प्रधानमन्त्री की निजी सचिवालय जनैलवा। बैठकमा आगामी दिनमा असिन अवचिन्त घटना हुई नै दिन सक्कु सुरक्षा कि निकाय तथा सरकारवाला निकायको बीच समन्वयकरण निर्णय हुल्वा हस्तकर्के बैठक मध्ये ध्येडोसिन भागमा विशेष विपद प्रति कार्यके पूर्व तयारी तथा व्यवस्थापन के विषयमा समेत छलफल हुल्वा। बैठकमा देशके समग्र सुरक्षा अवस्था तथा साउन 10 गते सुनसरीमा हुलक घटनाके समीक्षाका गर्ति राजनैतिक दल स्थानीय सरकारवाला व सुरक्षा निकायको संयुक्त प्रयासमा से अवस्था सामान्य करण तर्फ उन्मुख हुन परिषद के तर्फ मसे ब्रिफिङ कल रहे। बैठक पाछ मन्त्री परिषद बैठक जारी कल विज्ञतिमा भविष्यमा असिन घटना दोहोरिन नदिन सक्कु सुरक्षा निकाय सम्बन्धित सरकारवालासँग सम्ने कति सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकताको भावना काम धन्दाकै प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न उल्लेख वा संघ विपदके घटनामा खोज उद्धार तथा राहतके कार्यालय समयमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय सुदृढ बन्न लिने कलक हुलक विज्ञतिमा जनेर वा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री बालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुदन गुरूङ, परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री डाक्टर सौमी वागले, नेपाल सरकारकै मुख्य सचिव गोविन्द कार्की, प्रधान सेनापति अशोक सिग्देल उपस्थिति रहे। टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघद्वारा टिकापुर महोत्सवकी आय व्यय सार्वजनिक, आमदानीकी 25% रकम बचत। प्रवासी युवा समितिद्वारा राष्ट्रिय सिआर आधारभूत विद्यालय अरूण फाटा, सूर्यपुरमा शुद्ध खानेपानीकी फिल्टर वितरण, फिल्टर पहिला विद्यालय परिवार खुशी। संघीय शासन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल। ओशनसरी घटनाकी समीक्षा गति सुरक्षा परिषदकी बैठक सम्पन्न। दिता बुकला खोज खबर तह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद दिती आबुकला खोज खबर से मैं सीता चौधरी बिदाई तो यात्रा पास 6 बजे की खोज खबर सुन सकेंगी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रहे राम।

0: दाई नाच बा कहाँ जाए डबुट
1: पेशाब लाटा चर्पी जाए टुका
0: ए रुको नाट पछि नोकल छे मै टर्च लाइट लट्ठी दिएटु लेख जाओ
1: काचे चुनु लट्ठी व टर्च लाइट
0: काकर रही दाई राटिक बेला बाहे निक्र पर्लसी वा टोयलेट जाइ पर्लसी दैहा फे टर्च लाइट बार्ख को लम्बा लट्ठी देख के जाइ पर्था काकर कि बर्खा छ्याक बा साप रहसे थ टर्च को अजराले सापन ल्या खसे जैथा वो लट्ठी ठ्याक ठ्याक आओ सुनक साफ भक्त का
1: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोटकी छाई
0: दाई हम ना स्कूल मैडम सर मुख साफ मुख से ठाउसी म्यांग पड़लसी वो काम कर पड़लसी दैहा फेठा फुसियार भी पठा गई सीखे लाट का आम छेटवा जिहा झपा अथवा ध्यान घास चलक ठाव में म्यांग पड़लसी डम्मा लट्ठी देख ठ्याक ठ्याक बजेटी म्यांग पठा गई कल बाट
2: सात वर्ष छ्याक समय में सुक्खा ठाव बैठ मन पड़े ई मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना पीला कोष से सुक्खा ठाव का खोजी में उकड़ा बाहर निस्कट
1: मोस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लग्घ आई सक विश्वास लगना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैसे पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सकती था
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
4: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
5: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
4: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
5: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
4: अब त म ढुक्क
6: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
5: मोबाइल नम्बर 98 48 51 43 26 जमरापारी टिकापुर कैलाली

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वहाँ नन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अजी गहना बनैना त हो दुकान खोज्ती खोज्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाकर आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकर ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वात खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846239161 टीकापुर नगर पालिका को सूचना टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक एन 2078 बमोजिम कर तिरी नगरको विकास निर्माणमा सहभागी बनौं नगरपालिका कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर चुक्ता नगरे नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नगरपालिका कार्यालय बाध्य हुने छैन कर तिर्नु सबै नगरवासीको कर्तव्य हो भने सेवा प्राप्त गर्नु अधिकार हो त्यसैले कर तिरौं सभ्य र जिम्मेवारी नागरिकको परिचय दिउँ समयमै कर तिरौं जरिवानाबाट बचौं कर सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि टीकापुर नगरपालिकाको कार्यालय राजस्व उपशाखाको फोन नम्बर 091560883 सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9046774417
4: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
5: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा संबंधित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ
4: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
5: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
4: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
5: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
4: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
5: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
4: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
5: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
4: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
5: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
4: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
5: आईसीटी इंग्लिस ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
4: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाइफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खानेपानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
5: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
4: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
5: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
4: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली

0: बुका पिएर इठ कबु पेन्सिले रहेठ कबु झलै फटाका आजिठ का कना हो बाबा फ्यो ओस्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से लड़का सामान निहरे
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जलम भर भर बर बर
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कैठ कबु पेन्सिल हेरा कैठ कबु झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से नानम
0: था कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेन्सिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: कालिम्पोङ नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
1: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
0: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
2: काहुल बाबु अपने कलकलाइत रही अपने काकर कलकलाइत रही ले भुइया में के हो काकर भुइया में धनवाना बाटी
3: सुनी ना दादू हमारा दोनों जना बना में घास काटा रही मर संग में सबको काट रहा ही ना दादू हाली क्या करना हुई यही ना सत्य है उपचार के नौ बुगा कोयले से मिले रहा
2: ओहो ऐसी बेला में एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के अस्या लाख के बैठनी हुई यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा फोन कई दादू अपने नहीं आता है ना संघरिया ध्यान दी। हेलो मुकेश तू झटते ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ का यहाँ एक जना बाबू है ना सपवा काट के ना इमरजेंसी पर गिन तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल राजमार्ग 400 मीटर पश्चिम बाऊ पांचर बाटी ना हमरा मुकेश झटते ही आओ हाँ सबको काम छोड़ कर
4: बेटा संतोष मैं मोटरसाइकिल लेके आई गिनू झटते ही।
2: सुनी बाबू सपो कटलक मने है ना जत्रा साइकिल झटते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा रहे पड़ता ऐसी बेला में सबसे झटते हुई ना यातायात के साधन बाजे पड़ता यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकल से अपने वो सवारी चालक के बीच सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेरे से बैठा कर तुरंत उपचार केंद्र पुगाई पड़ता मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भरपर में संघरिया मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच से बैठा कर ना उपचार केंद्र पुगा डार हूँ अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आए
3: गुण लगा दे दादू
5: याद करी 7-10 से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई
6: यदि समय में जो उपचार कर सकल से 7-10 लाख मन बचाई सक दी था वो इन मसे हुई ना मृत्यु दर फिर कम कर सक दी था 7-10 लाख मन है ना छत्त से छत्त उपचार केंद्र में ले जा डारी यही ले उ मन एक जीवन बचाए भारी मदद कर था विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसे पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकती था।
7: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

विजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। बीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।